एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर वरन जात अर पात नहिन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अन पाओ प्रकाश अमित तोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गण जय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत गुरुबिन कोर अंधार गुरुबिन समझ न आवै गुरुबिन सुरत ना सिद्ध गुरुबिन मुक्त न पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कट है सब तेरे गुर नैन वैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखे आओ नहो की आओ।

तेयक अथ संसार मह कहाँ पयो जो दो लोचन मूद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाओ सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो हऊँ आया दूर हूँ चल कै मैं तकी तौ शरणाए जियो मैं आसा रखी चित मह मेरा सब दुख गवाए जियो मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुदे आगै अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पासे एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहु शरणाई अंदर सच्चा नेहु लाया प्रीतम अपना तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डठे सच्चे पात सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर सहां दा साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पात साह सिर सहां दा साह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह सत

पौड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग बिरंगे निगन जपन करते बाजिया, अंदर जियो सबकी जान ला, सबकी तेरे वास तेरा करबला।

माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां।

0: नानक दासन दास तुधिया गए बिनवता सलोक।
1: पमन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दो।

साहिब सिस वालों जिर कीती सो पार पया काहू नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै हो बल बल जाओ रमैया कारने

बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर

गुर प्रसाद नानक मत पाए, सर्व सुख हर नाम वडाए, गुर प्रसाद नानक मत पाए। श्लोक

तेन पवन पर पूर्यो सोई, आपन सरस कियो ना जगत कोई, आपने आप ही उपायो, सुर नर सुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गंधर खोजंत फिरे, अबनासी अचल अजुनी संभो पुरखोतम अपार परे, करण कारण सम्राट सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो श्री गुर रामदास, जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो, सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन तन गोबिंदियो, अंगद अनंत मूरत निज तारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो, गुरु अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो करते आयो श्री गुर रामदास, जय ओ जय जग में ते हर।

0: जह सत गुर सिमरंत नायन के तिमर मिटा खिन। जह सत गुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जह सत गुर सिमरंत जिह की तपत मिटावै। जह सत गुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै। सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो। जह सत गुर लग प्रभ पाइया सो सत गुर सिमरो नरहो।
1: जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट उचियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिम गुर अमरदास। कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस बसुर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलिया कर प्रकट सोबास। त्रो प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रकाश। जे पिखद अत रहे रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।
2: जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासुर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पो मन तुम मलियागर प्रगट सुबास। त्रु प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो परगास। जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास।
3: नानक नाम निरंजन जानेओ किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंगद अंग संग पयो।

0: आई तो ते टिका ते जप माली तहन मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़क ते पा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास श्री विगायन तन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे ओई साथ कुड़ी रास कूड़ा पार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ श्री जगत कसाई नील वस्त्र पहरुवें प्रवाण मलेश ताले पूजी प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक उपर किसे ना जाना दे के चौंका कड्डी कार उपराए बैठे कूड़े यार मत पिटै वे मत पिटै न साडा फिटै तन फिटै फिर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सत्याई सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित।